0: सारी दुनिया को झूठ बोलते फिरते हो कि यू आर ऑन अ डाइट, लेकिन ऑफिस आने से पहले एक बड़ा सा बर्गर खा के आते हो, ये आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया ना, बहुत जूते मारने वाली आपको। ऐसी ही या इससे वाहियात कन्फेशन अगर है आपके पास, तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान। हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर मेरी मिस्ट्री कॉलर है हु साउंड्स क्यूट AF। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
1: हाय रोशी,
0: हाउ आर यू माय डार्लिंग? यार मैं तो बहुत ही सही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कन्फेशन है नहीं। मैंने इस हफ्ते तो बिल्कुल ही गन नहीं मचाया जिंदगी में, बट आपका जो कन्फेशन आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था ना, जरा बताना फिर से अब फोन पर।
1: अरे यार, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ उसके घर।
0: हाँ,
1: मैं गई।
0: हाँ,
1: और गेट खुला हुआ था।
0: हाँ,
1: तो मैं कहा ओके यार, सुनते ऐसे ही बगैर बेल बजाए आए, सरप्राइज उन किया। कितने टाइम से पहले पहुंचे थे, ठीक है। तो मैं अंदर गई, अब आई सॉ समवन इन किचन, तो मुझे लगा वही है।
0: ऑब्वियसली
1: आई थिंक ही वाज कटिंग फ्रूट्स एंड स्टफ, ठीक है, प्लस ही वाज शर्टलेस, ठीक है। तो मैं गई, हक करा, ठीक है, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड किसिंग हिम ऑन हिज नेक, बट it wasn't him.
0: What are you saying?
1: It was his elder brother.
0: आप अपने बॉयफ्रेंड की पीठ नहीं पहचानते हो? आपने अभी तो बोला था कि वो शर्टलेस है, तो आपको पता नहीं है कि मेरे बॉयफ्रेंड की पीठ ऐसी नहीं वैसी लगती है?
1: यार मैं भाग के बस चली गई, मैंने रियलाइज नहीं किया ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो आज मुझे घर मिल रहे हैं, तो मैं चली गई। मेरा कोई भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता था उसको भाई होगा वहाँ पे।
0: उसने बोला था आपको कि वो घर पे अकेला है?
1: नहीं बट अगर जब भी हम मिले तो ऐसे वो अकेला ही होता है ना, तो मैं तो यही अज्यूम करूंगी।
0: एक सेकंड बिफोर आई रोशिफाई यू, मुझे ये बताओ कि उसके भाई का क्या रिएक्शन था?
1: उसके भाई का रिएक्शन वाज लाइक सरप्राइज, एंड जितना मुझे लगा ही एंजॉयड इट, लाइक व्हाट रियली। और मुझे अभी नहीं पता कि उसने उसके भाई ने उसे बताया है या नहीं बताया, बट आई डिडंट टेल।
0: अच्छा ये बताओ, बिफोर आई रोशिफाई यू अगेन, अच्छा ये लास्ट प्रॉमिस अब मैं कर दूंगी रोशिफाई, ये बताओ आपको मजे आए कि नहीं?
1: नहीं
0: आप कितनी पतिव्रता गर्लफ्रेंड हो। जस्ट फॉर दैट आई विल रोशिफाई यू, एक गहरी सांस लीजिए। थैंक यू बेबी, ऑल द बेस्ट। अगली बार से बिफोर यू हग समवन पीछे से जस्ट मेक श्योर इट इज द पर्सन यू इंटेंड टू हग,
1: ठीक है? सरप्राइज ही नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी यार।
0: इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। हाँ आप मत सरप्राइज करना, और अगर ऐसी मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपने भी इंटेंशन तो यही की थी कि सरप्राइज करोगे, लेकिन सरप्राइज वॉज ऑन यू, देन वाई डोंट यू टेल मी ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: It's hot.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा।

मेरी बेस्टी एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी व्हेन हर वेरी सीरियस बॉयफ्रेंड वेंट ओवरसीज, क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट था 6 महीने का. सो फॉर दो 6 मंथ्स जब भी मैं अपनी बेस्टी के घर जाती थी एंड आई यूज्ड टू यूज हर वॉशरूम, वहां पर मेल डिओड्रेंट एक तरह का एक कंपनी का 6 बॉटल्स पड़ी होती थी. एंड आई वाज लाइक, तू पागल हो गई है, ये क्या कर रही है? एंड इट्स अ गाइज डियो एंड यू लव फ्लोरल फेमिनिन स्मेल्स, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? आर यू चीटिंग ऑन योर बॉयफ्रेंड? शी वाज लाइक, तू पागल हो गई, आई एम नॉट चीटिंग ऑन हिम. क्योंकि मुझे उसकी इतनी याद आती है वो जो डिओड्रेंट यूज़ करता है, मैंने उसकी 6 बॉटल्स लेके बाथरूम में रख ली है. जब भी मुझे उसकी याद आती है, आई जस्ट स्प्रे ऑन माई सेल्फ एंड आई फील दैट ही इज़ विद मी. ओके, यू गॉट दिस, आर यू हैप्पी नाउ? एंड आई वाज लाइक, भाई लोग वैसे ही रिलेशनशिप में पागल होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो एक्स्ट्रा पागल हो जाते हैं. और अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो हुज़ फिगर्ड आउट हाउ टू मेक योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. सो हिट मी अप विद योर टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक एन LDR वर्क. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम एंड फेसबुक. सो while you do what you have to do, kahi mat jana jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: सारी दुनिया को झूठ बोलते फिरते हो कि यू आर ऑन अ डाइट, लेकिन ऑफिस आने से पहले एक बड़ा सा बर्गर खा के आते हो, ये आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया ना, बहुत जूते मारने वाली आपको।
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: ऐसी ही या इससे वाहियात कन्फेशन अगर है आपके पास तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान। हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर मेरी मिस्ट्री कॉलर है हु साउंड्स क्यूट AF। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
2: हाय रोशी,
0: हाउ आर यू माय डार्लिंग?
2: I'm good, how are you?
0: यार मैं तो बहुत ही सही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कन्फेशन है नहीं। मैंने इस हफ्ते तो बिल्कुल ही गन नहीं मचाया जिंदगी में, बट आपका जो कन्फेशन आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था ना जरा बताना फिर से अब फोन पर।
2: अरे यार तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ उसके घर।
0: हाँ।
2: मैं गई।
0: हाँ।
2: और गेट खुला हुआ था।
0: हाँ।
2: तो मैंने कहा ओके यार सुनते ऐसे ही बगैर बेल बजाए, आई सरप्राइज किया कितने टाइम से पहले पहुंच गई थी। ठीक है तो मैं अंदर गई, अब आई सॉ समवन इन किचन, तो मुझे लगा वही है
0: ऑब्वियसली।
2: आई थिंक ही वाज कटिंग फ्रूट्स एंड स्टफ। ठीक है प्लस ही वाज शर्टलेस। ठीक है तो मैं गई कुक से हग करा। ठीक है एंड उसके बाद आई स्टार्टेड किसिंग हिम ऑन हिज नेक, बट it wasn't him.
0: What are you saying?
2: It was his elder brother.
0: आप अपने बॉयफ्रेंड की पीठ नहीं पहचानते हो? आपने अभी तो बोला था कि वो शर्टलेस है, तो आपको पता नहीं है कि मेरे बॉयफ्रेंड की पीठ ऐसी नहीं वैसी लगती है?
2: यार मैं भाग के बस चली गई, मैंने रियलाइज नहीं किया ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो आज मुझे घर मिल रहे हैं, तो मैं चली गई, मुझे कोई भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता था उसको भाई होगा वहाँ पे।
0: उसने बोला था आपको कि वो घर पे अकेला है?
2: नहीं बट अगर जब भी हम मिले तो ऐसे वो अकेला ही होता है ना, तो मैं तो यही अज्यूम करूंगी।
0: एक सेकंड बिफोर आई रोशिफाई यू, मुझे ये बताओ कि उसके भाई का क्या रिएक्शन था?
2: उसके भाई का रिएक्शन वाज लाइक सरप्राइज एंड जितना वो चला था ही एंजॉयड इट। और मुझे अभी नहीं पता कि उसने उसके भाई ने उसे बताया है या नहीं बताया, बट आई डिडंट टेल।
0: अच्छा ये बताओ बिफोर आई रोड शिफाई यू अगेन, अच्छा ये लास्ट प्रॉमिस अब मैं कर दूंगी रोड शिफाई, ये बताओ आपको मजे आए कि नहीं?
2: नहीं
0: आप कितनी पतिव्रता गर्लफ्रेंड हो, जस्ट फॉर दैट आई विल रोशिफाई यू। एक गहरी सांस लीजिए। थैंक यू बेबी, ऑल द बेस्ट। अगली बार से बिफोर यू हग समवन पीछे से जस्ट मेक श्योर इट इज द पर्सन यू इंटेंड टू हग।
2: ठीक है सरप्राइज ही नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी यार।
0: इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। हाँ आप मत सरप्राइज करना, और अगर ऐसी मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपने भी इंटेंशन तो यही की थी कि सरप्राइज करोगे लेकिन सरप्राइज वॉज ऑन यू, देन वाई डोंट यू टेल मी ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना तो हीरो के बारे में है ना ही हीरोइन। दिस इज द शो जहां मेन कैरेक्टर इज गुड म्यूजिक एंड गुड म्यूजिक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां पे हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है। हम अपना 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक करेंगे, सम स्पेशल गाना शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। संजू राठौर की कॉम्पोजिशन, जी पार्क का प्रोडक्शन, संजू राठौर की आवाज में। गाने का नाम है बैंगल्स। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा ये गाना बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद राघव कौशिक की आवाज रेखा भारद्वाज के साथ, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है दरमिया, दिस इज द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन। मुसाफिर कैफे ओटीटी शो से है ये। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगल्स ऑन नंबर 10 देन दरमिया ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10।

0: रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक, अमृता सलूजा के लिरिक्स, गाने का नाम है दरमिया, मुसाफिर कैफे से है ये गाना, द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. The show is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram pe jao. Mera handle is @RJKanika. Matlab mera naam to mummy ne Kanika hi rakha. Pichle 7 saal se I'm bringing these top 10 songs of the week for you. And tab se RJ Kanika. It's quite odd, pata hai. Bahut log mujhe jo sirf Instagram se jante hain, jab milte hain, to hi RJ Kanika bolte hain. And you don't even realize ki wo tumhari pehchan ban jati hai. It's not a bad thing, you know. Everybody wants that takeaway factor with their art, right? Gaana number 9 par humne Darmiyan suna Rekha Bharadwaj ji ki awaaz mein. Jis bhi gaane mein Rekha ji ki awaaz hoti hai, wo ek second ka gaana sunte hi hum samajh jaate hain ki are ye to Rekha Bharadwaj ji hain. Such strong is her voice, her identity. सोचने वाली बात है, इतने गाने आते हैं, इतने गाने जाते हैं, गाने सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन जाते हैं, लोग कुछ हफ्ते सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, पर कुछ गाने और कुछ आर्टिस्ट की आवाजें हमें हमेशा याद रहती हैं। इसे ही हम वो टेक अवे फैक्टर कहते हैं। वो आर्टिस्ट की आवाज हो सकती है, जैसे रेखा भारद्वाज जी की आवाज है, AR रहमान जी की आवाज है, सुनते ही पता चल जाता है कौन है, या फिर वो एक कंपोजर की ब्रिलियंस हो सकती है जो वो गाने में एक इंस्ट्रूमेंटल पीस या सोलो के साथ या किसी गिटार सोलो से इंट्रोड्यूस करें। इतने सारे आइकॉनिक गाने हैं जिनकी गिटार सोलोज या इंट्रो म्यूजिक को सुनते ही हमें पता है कि कौन सा गाना है, जैसे कि दिस वन। मैंने गाने का नाम नहीं बताया, गाने की पहली लाइन नहीं आई, आपने सिंगर्स को नहीं सुना, एंड यू नो इट्स साथिया का म्यूजिक। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको एक 90s के इंडी पॉप क्लासिक का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है। काउंटडाउन पर आगे चल के हमारे कसर क्लासिक में ये पूरा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। Now back to the countdown. अभी countdown पर आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना is a नई नवेली एंट्री। इस गाने को छोटे बच्चे गा रहे हैं, कॉलेज वाले लोग रील्स बना रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं और आप इसको ऐसा एटीट्यूड स्टार्टर लाइन की तरह बोल रहे हैं। गाने का नाम है बूम शाकालाका बाय धंधा न्योलेवाला एंड कृष्णा। फिनोमिन हिसाब का प्रोडक्शन, बूम शाकालाका इज अ नई नवेली एंट्री, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लोकी

हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनी की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साडी सुन। दिस सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है ये गाना, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।

0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly believe gaane share karne se pyar badhta hai. Is show ke zariye jo gaane aap mere saath recommend karte ho aur gaano ke saath saath jo aap apne experience, kahaniyan, puri gossip bata dete ho na ki yaar tab hua tha aur ye gaane ne ye kiya tha. Sabse pehle to kas ke thank you. Main aur mera sound producer Ashkai, we really look forward to all your recommendations. It's time for what we call
1: Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. ये वो गाने हैं जो ना तो पुराने साउंड करते हैं और ना ही नए हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है.
0: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: डूबा रहता हूं आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूं मैं चाहत में तेरी.
0: गाने का नाम है डूबा डूबा बाय द सिल्क रूट, मोहित चौहान की आवाज में. ये गाना 1998 में रिलीज हुआ था, सिल्क रूट की डेब्यू एल्बम बूंदे का पार्ट था. आई थिंक आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग. 1998 का वो दौर था जब पॉप म्यूजिक का मतलब बिल्कुल भी फिल्म जैसा म्यूजिक बनाना नहीं था, बल्कि ये गाना अपने आप में ही एक दुनिया थी, अपने आप में ही एक फिल्म थी. एंड समटाइम्स आई थिंक कि क्या तब सिल्क रूट को इस बात का कोई भी अंदाजा था कि वो हमें एक ऐसा गाना दे जाएंगे जो पूरे 30 साल बाद भी हम उतनी ही इंटेंसिटी के साथ सुनते हैं. आज भी इस गाने को सुन के एकदम मन करता है कि मैं पहाड़ों पे चली जाऊं, कि शाम का वक्त है, सूरज अभी ढला ही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है बट रोशनी भी है, पास में एक नदी बह रही है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं. चाहे जगह असली हो या ना हो, बट दिस फीलिंग एंड दिस सॉन्ग ऑलवेज इमोट्स दिस. कुछ गाने भी तो हमारी जिंदगी में मेमोरी का टिकट होते हैं. दे टेक अस बैक टू दैट ओल्ड प्लेस, कोई भूला हुआ दिन, कोई दबी हुई मेमोरी. एंड दिस सॉन्ग बाय मोहित चौहान एंड सिल्क रूट इज एग्जैक्टली दैट. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड चलो उस नदी के किनारे या ढलती हुई शाम में मोहित चौहान की आवाज में सिल्क रूट का गाना डूबा डूबा आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

मैन ओ मैन, द सॉन्ग जस्ट गेट्स बेटर विद एवरी ईयर. मोहित चौहान की आवाज में दैट वॉज डूबा डूबा ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. इस सेगमेंट के बाद मुझे सब अच्छा अच्छा लगने लगता है. जैसे आई हैव गॉन बैक टू द सिंपल टाइम, जब हमारे पास सिर्फ वक्त ही वक्त था. वक्त था वक्त बर्बाद करने का, और वक्त बर्बाद करने का कोई गिल्ट नहीं था. एट आरजे करेंगे और इंस्टाग्राम पर आगे मुझे बताओ 90s 2000s के कौन से आइकॉनिक इंडी पॉप गाने हैं जिनको जब आप आज सुनते हो सो यू आर टेकन बैक टू दो सिंपलर टाइम्स. आई एम नॉट दैट ओल्ड बट आई एम एन ओल्ड सोल. लेकिन मैं बात तो ऐसे करती हूँ, ओहो पुराने दिन सिंपल टाइम्स, बट इट इज ट्रू. But then there are some songs, आज के आर्टिस्ट contemporary music जो ऐसे गाने बना रहे हैं जो हमारी complicated life को simple कर देते हैं. And Farak is exactly one of those artists. Countdown का अगले वाला गाना written and composed by Farak, गाने का नाम है तारे. 7 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजिशन ऊपर जम करके तारे is playing right next for you on Gaana number 6. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy. Number 6.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 5

0: अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है उड़ी उड़ी। दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुन के आपका दिल अनलॉक हो जाता है। दे साउंड लाइक फ्रीडम। मन करता है कि गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलूं, दोनों हाथ फैलाऊं और चिल्लाऊं, मजे करूं, नाचूं। They put you in a groove, they put you in a good mood. And there are some incredible independent songs. जैसे चाल में मस्ती ला देते हैं, जो हमारे दिल को अनलॉक कर देते हैं, which sound like freedom. And I'm gonna talk about one such song. It's one of the most celebrated collabs of last 10 years. I'm talking about Divine and Raja Kumari का City Slums. Run and tell your mommy. ये गाना 2017 में आया था एंड व्हाट अ वंडरफुल कोलिजन ऑफ टू वर्ड्स। एक तरफ राजा कुमारी, एलए बेस्ड पॉप सिंगर सॉन्ग राइटर, मीट्स मुंबई के अपने गली रैपर डिवाइन। आज इट साउंड्स लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, राइट? बिकॉज हम इस तरह के कोलैबोरेशंस देखते रहते हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन आर्टिस्ट के बीच में देखते हैं, बट दिस कोलैब इन 2017 मेंट सच अ बिग डील। राजा कुमारी कैलिफोर्निया बेस्ड, वो ऑलरेडी बहुत बड़े अमेरिकन आर्टिस्ट के लिए गाने लिख चुकी थी, उनके साथ कोलैबोरेट कर चुकी थी, एंड उनका तेज सरार English flow with Divine sounds incredible, like a beautiful cocktail in the song. Why I love listening to this song is that ye gana na humko hamari identity se bahut close feel karwata hai. It makes you feel good about yourself. It makes you feel good about where you belong to. To apne radio ke volume bada lijiye. Raja Kumari and Divine ka gana, gana ka naam hai City Slums. It's got an earworm hook and I'm sure you will love it. Playing right next for you on Gaana Indie Top 10, bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: दिस इनक्रेडिबल म्यूजिक डुओ फ्रॉम कुरुक्षेत्र बंजारे का गाना, गाने का नाम है बरसात। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बरसात वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @rjkanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी। अब आते तो ज्यादा टाइम तो आप गाना सुन लेते हो, गाने का नाम भूल जाते हो और फिर मुझे मैसेज करते हो कि गाना नंबर 4 पे कौन सा गाना बोला था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, आपके लिए जो गाने का नाम भूल जाते हो, लेट्स डू अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर दिस वीक वॉज संजू राठौड़ का बैंगल्स। राघव कौशिक रेखा भारद्वाज का दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
2: तेरे मेरे दरमिया।
0: उसके बाद गाना नंबर 8 पर नई नवेली एंट्री, कृष्णा धंधानियोली वाला का बूम शाकला का डेब्यूज ऑन गाना नंबर 8।
3: बूम शाकला का, अरे बंदूक शाकला का, दिला दे बूम शाकला का, दिला दे बूम शाकला का।
0: हर्ष नसीदीप क्लेयर का साडी सुन ऑन गाना नंबर 7। फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। दिस ब्यूटिफुल फोक पॉप सॉन्ग्स बाय अनीश सरकार हृदय उड़ी उड़ी दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। बंजारे का बैरन था दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
4: रखे तेरे झंझरा के जोड़े मिर्गे।
0: डबल वैमी बाय बंजारे, उन्हीं का गाना बरसात हमने सुना ऑन गाना नंबर 3।
5: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी।
0: एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बादशाह शर्वी यादव हितेन का गाना, गाने का नाम है बैंगर। 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। ये गाना पिछले हफ्ते से 1 नहीं 2 नहीं, पूरा 3 पोजीशन ऊपर जंप करके बादशाह का बैंगर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यू मेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार है ये गाना, टिका हुआ है 3 हफ्तों से ऑन गाना नंबर 1, 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा, Yet again on Gaana number 1. ये दोनों गाने back to back, banger on number 2, शीशा on number 1, only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका, enjoy.

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक, जैसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपलसरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20। माय नेम इज सुरेन सुंदरम, एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतम दा, एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
0: नंबर 20।

कभी नोटिस किया है, कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन। दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग हैं, फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

बेशरम रंग एफ्रो बीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस, क्योंकि

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है कि आपको अच्छी तरह मालूम है।

चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, पर इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन। नंबर 18।

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपरहीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपरहीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपरहीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपरहीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपरहीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपरहीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल क्लिप्स किसी सुपरहीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम। नंबर 13।

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है, फिल्म अच्छी लगे या बुरी लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उस स्क्रिप्ट। एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसे ही नॉर्मल नहीं, नहीं कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर, हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कन्फ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में, दिस इज ऐसी मेरी वाइब।
2: नंबर 9,
3: अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ।

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

0: इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीज करना है। मुझमें कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज दिस इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई नो लाइक हिम, सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग जहाँ तक कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टम्बल अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम वेरी सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, losing someone you love, so a very painful moments, and it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज। फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर वन।

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यही खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अनटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy, it's hot.
1: Do to leki mandri la de, din to leki.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

करने सूरत से सीधा अहमदाबाद आया खेलने के लिए संग डांडिया भी लाया Tell me baby girl what is your name छे पहली नजर में हो गया है तुमसे प्रेम छे आज रात एक

मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग स्पेशल।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

देखो लाइफ में दो चीजें कभी स्किप नहीं करनी चाहिए, एक तो ब्रेकफास्ट और दूसरा मिर्ची मॉर्निंग्स, क्योंकि दोनों मिस किए तो दिन का मूड एकदम खराब हो जाएगा ना यार। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी मिर्ची फैमिली, मैं बोले तो प्रिसला आ चुकी हूँ लेकर तुम्हारा फेवरेट शो, नाम है इसका मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर तुम्हें बॉलीवुड की ढेर सारी गॉसिप्स के साथ साथ देसी दुनिया का काफी सारा नॉस्टैल्जिया भी मिलता है एंड काफी सारी गुड वाइब्स मिलती है जो तुम दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो, एंड इससे तुम्हारा दिन मंडे हो या फ्राइडे हो एकदम अमेजिंगली वीकेंड टाइप का हो जाता है। Whether you are rushing to work, dropping your kids off to school, packing their lunchbox, या फिर you are stuck in traffic, या फिर coffee हाथ में लेकर अपनी life के software update का wait कर रहे हो, I've got you, and I've got you for a few hours from now. आज का rule काफी simple है, no boring mornings allowed. तो यहाँ पर होने वाला है म्यूजिक, मस्ती, बॉलीवुड गॉसिप्स, देसी व्हील्स और बीच बीच में मैं भी आने वाली हूँ अपनी चटपटी मिर्चीदार बातों को लेकर। यू कैन कॉल मी योर बेस्टी एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी 9033647244, बट दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर। अगर तुम्हें मेरा सोशल मीडिया का हैंडल चाहिए तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। और अभी मिर्चीदार बैंगर्स लाइंड अप है तुम्हारे लिए एज प्रॉमिस्ड। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग you

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

मॉर्निंग माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो पता करते हैं कि आज के दिन टाइम ट्रैवल करने पर हमें क्या पता चलता है। 1869 में अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे पैनिक हुआ। जे गोल्ड और जेम्स फिस्क ने गोल्ड मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश की। मार्केट जो है वो हिल गया। बेसिकली वॉल स्ट्रीट का भाई ये हो क्या रहा है वाला मोमेंट था। 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट ने वायोमिंग का डेविल्स टावर अमेरिका का फर्स्ट नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। नाम स्कैरी था लेकिन व्यूज अपेरेंटली वर्थ इट थे। 1948 में जापान में होंडा की फाउंडेशन हुई। सो टेक्निकली आज का दिन उन लोगों को भी सलूट करता है जो ट्रैफिक में होंडा को ब्लेम करते हुए ऑफिस पहुंचते हैं। 1957 में आइजनहावर ने फेडरल ट्रूप्स भेजे टू एनफोर्स स्कूल डीसेग्रीगेशन इन लिटिल रॉक आर्कनसा। सेम ईयर बार्सिलोना में कैंप नुओ ऑफिशियली ओपन्ड। फुटबॉल फैंस अब तो अटेंडेंस मैंडेटरी हो गई थी। 1968 में 60 मिनट्स प्रीमियर्ड ऑन CBS। न्यूज टेलीविजन का एक आइकॉनिक चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुली मार्स ऑर्बिट में एंटर हुआ। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स एंड द फर्स्ट कंट्री टू सक्सीड ऑन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। देन 2023 पर पहुंचते हैं। नासाज ओसायरस रेक्स मिशन सक्सेसफुली ब्रॉट एस्ट्रॉइड बेनू सैंपल्स बैक टू अर्थ। मतलब ये स्पेस ने लिटरली एक पार्सल डिलीवर किया और ऐसे ही हिस्ट्री बनती है जिसके बारे में हर रोज हम बात करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मेरा सोशल मीडिया हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चिपक के बैठो क्योंकि आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड हियर्स योर वेदर रियलिटी चेक बिफोर यू स्टेप आउट. राइट नाउ इट्स अराउंड 50 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रही है जो तापमान को 43 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास फील कराएगी. सो हाँ, मॉर्निंग में तुम्हें जैकेट को बाय बाय बोलने की जल्दी नहीं करनी है, लेकर जाना साथ में. वी कुड सी अ शावर और टू दिस मॉर्निंग फॉलोड बाय लिंगरिंग क्लाउड्स थ्रू द आफ्टरनून. रेन चांसेस रेंज फ्रॉम अबाउट 10 to 40%, बट हियर्स द गुड न्यूज, द नेक्स्ट 24 hours are expected to bring basically no measurable precipitation. So umbrella ko emergency backup banakar aaj rakho apne saath mein, permanent roommate banane ki zarurat nahi hai. Today's high will reach around 67 degrees Fahrenheit, while the low tonight will drop to around 57 degrees Fahrenheit. Compared to yesterday, the high is pretty similar, 67 degrees Fahrenheit today versus 68 degrees Fahrenheit yesterday. Winds will be coming from the northeast at around 9 to 14 miles per hour. So that breeze may make things feel a little cooler than the thermometer suggests. And aaj raat ko partly cloudy rahega with temperatures around 57 degrees Fahrenheit. So desi weather strategy aaj ke liye rahegi, ek light jacket ko aur umbrella ko carry karo just in case, and confidence level hona chahiye mirchidar, because weather app ko kabhi kabhi khud nahi pata hota hai ki wo kya bol rahi hai. And whether you're checking the skies right now ya phir ghar mein baith kar hi mujhe sun rahe ho, Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. तुम्हारा वेदर अपडेट हो गया, अब चलाते हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

हाय देयर, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो पता करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अराइव्ड इन द यूएस एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली मेट हिम एट जॉइंट बेस एंड्रूज अलोंग विद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप। इट्स अ प्रीटी अनयूजुअल एयरपोर्ट वेलकम फॉर अ विजिटिंग लीडर एंड द विजिट इज फोकस्ड ऑन बिग टिकट इश्यूज लाइक ट्रेड, AI एंड सिक्योरिटी। एंड यस, शी अराइव्ड इन अ स्पेसिफिकली कॉन्फिगर्ड बोइंग 747, मतलब कि फ्लाइट भी काफी VIP थी और वेलकम भी। नंबर टू पर, इंडियाज कार्स मे बी गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल स्टोरी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया नितिन गडकरी सेज अ कार केपेबल ऑफ रनिंग ऑन 100% इथेनॉल इज सेट टू लॉन्च इन अक्टूबर। रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई इट एज अ टोयोटा इनोवा विद अ हाइब्रिड पावर ट्रेन। And lastly, a serious update from Saudi Arabia. Emergency alerts were issued across areas including Mecca, Jeddah, Taif, Tabuk and Yanbu over a potential danger. Saudi Civil Defense later said the danger has passed and asked residents to continue following official instructions. And that's your Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Find me at Mirchi Pris on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And you can also WhatsApp me 9033 Mirchi par. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और हम सबने कभी ना हेल्थ केयर हीरो का शुक्रिया किया है, समवन हु टेस्टेड, ट्रीटेड, केयर्ड फॉर एंड रीअश्योर्ड अस या फिर हमारे लव्ड वंस। लेकिन एक ही थॉट आता है दिमाग में कि थैंक गॉड दीज पीपल एग्जिस्ट। एंड इफ यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन हु हेल्प्स आउट अदर पीपल दिस वे, देन एम्स एजुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, गिव्स यू मल्टीपल वेज टू बिल्ड अ करियर इन हेल्थ केयर। बिकॉज हेल्थ केयर में सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक ऑप्शन नहीं होता है बॉस, देर आर सो मेनी अदर रोल्स वे यू कैन मेक अ रियल डिफरेंस। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि यार मुझे करियर में भी कुछ मीनिंगफुल करना है और हेल्थ केयर फील्ड में एक्सप्लोर भी करना है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मनी, देन यू आर लिसनिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तुम विजिट कर सकते हो aimseducation.edu, दैट इज aimseducation.edu, या फिर कॉल कर सकते हो अभी की अभी 9082220002 पर एंड यू कुड डिस्कवर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर वेटिंग फॉर यू। सो इफ यू वॉन्ट ऑल दिस दैट आई जस्ट मेंशन्ड, देन यू मस्ट चेक आउट एम्स एजुकेशन। एंड अभी के लिए चेक दीज मिर्ची तार बैंगर्स कमिंग अप योर वे। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर और जानकारी चाहिए या मुझसे कनेक्ट करना है तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप 9033 मिर्ची इज माय नंबर। ड्रॉप इन योर मैसेजेस राइट नाउ 9033647244 पर। एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम्हारी मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं गोल्ड का क्या हालचाल चल रहा है।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,370. आज गोल्ड के प्राइजेस $4,370 पर ट्राउंस के साथ अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। गणेश चतुर्थी, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस, दिवाली, डांडिया सब हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं और गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी अपर ट्रेंड ले रहे हैं। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आइए राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 9 मंथ की फाइनेंसिंग में ज्वेलरी घर लेके जाएं और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। कमिंग अप मिर्ची दैट बैंगर्स फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओह गॉड, वन मोर।

0: आज स्टार्स क्या बोल रहे हैं पता करने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इट इज यानी मेष राशि कॉन्फिडेंस फुल वॉल्यूम पर है आज और रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाले हैं। आज दिल और दिमाग दोनों तुम्हारी साइड में है और बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि मॉर्निंग थोड़ी सी अरे यार ये भी होने वाला है टाइप की हो सकती है। माइनर चैलेंजेस आएंगे तो पैनिक नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो आगे बढ़ते रहो। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 27। जेमिनी यानी मिथुन राशि अपॉर्चुनिटीज आर ठक ठक ठक नॉकिंग, बट हर शाइनी अपॉर्चुनिटी को बिना सोचे जंप मत कर लेना, इंपल्स को थोड़ा सा म्यूट पर रखो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। कैंसर यानी खरक राशि इमोशंस आज थोड़े से रोलर कोस्टर मोड में हो सकते हैं, रिएक्शन देने से पहले एक ब्रेथ फिर रिप्लाई वरना व्हाट्सएप पर टाइपिंग कभी खत्म नहीं होने वाली है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, कुछ ओल्ड इश्यूज वापस टेबल पर आ सकते हैं, पेशेंस रखो हर प्रॉब्लम को सेम डे डिलीवरी नहीं मिलती है। लकी कलर इज मास्टर, लकी नंबर इज 19। वर्गो यानी कन्या राशि वर्क पे जो रिजिड फीडबैक मिल रहा है वो दिन के साथ सॉफ्टन होने वाला है, एज द डे क्लियर्स इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ का स्पेस बनेगा। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 42। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दैट वाज राशि जोन पार्ट 1। बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी मिर्ची मॉर्निंग्स पर इन जस्ट वाइल, तब तक के लिए तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ए क्या बोलती तू, ये हम पूछ रहे हैं स्टार्स से। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आई एम बैक विद राशि जोन पार्ट टू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, रिस्ट्रिक्टिव स्केड्यूल से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन इवनिंग तक फोकस शिफ्ट होने वाला है और मूड जो है वो लाइटर फील करेगा। बेसिकली कैलेंडर को थोड़ा सा इग्नोर नहीं बल्कि मैनेज करना है। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 8। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज तुमको खुशी होगी दैट यू ट्रस्टेड योर सेल्फ। डीप कॉन्वर्सेशन स्मॉल टॉक्स को रिप्लेस करेंगी एंड ऑनेस्टली सो वेदर कैसा है टाइप से बेटर ही होने वाले हैं। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 23। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, मॉर्निंग में दूसरों की डिमांड थोड़ी सी इरिटेट कर सकती है, बट टुनाइट क्वाइट कोजी नाइट इन पजामास, वन कंफर्ट वन एंड दुनिया जीरो। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 11। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, गुड न्यूज ऑन द मनी फ्रंट, टाइमली पेमेंट या फाइनेंशियल रिवॉर्ड आ सकता है। तुम्हारी स्किल्स पर ट्रस्ट रखो और हर्डल्स को हैंडल करो बिकॉज You've got this baby. Lucky color is emerald. Lucky number is 35. Aquarius yani kumbh rashi. Charisma today peak mode par hai. Lead with warmth but dusro ko bhi collaborate karne do yaar. Utna space diya karo logo ko yaar. Teamwork bhi attractive hota hai, you know. Lucky color is electric blue. Lucky number is 17. Pisces yani ki mean rashi. Long term dreams phir se reachable lag rahe hain. Lekin dreams board ko dekhte rehna. Ek simple practical step lo and start making it real. Lucky color is peach, lucky number is 29 and that was your Rashi Zone part 2. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Abhi ke liye mirchidar bangers chalate hain tumhare liye and you go and follow my socials. Mirchi Prus is my handle name, Insta or X par and WhatsApp par. Mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

भाई शो खत्म हो रहा है लेकिन शाहरुख खान की नेटवर्थ सुनते सुनते शायद पूरा दिन लग जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। और जाने से पहले, रैप अप करने से पहले, एक फिल्मी एंड फाइनेंशियल दोनों टाइप की अपडेट देकर जाती हूँ, बिकॉज किंग खान इज स्टिल रूलिंग आवर हार्ट्स एंड बॉलीवुड एंड द वर्ल्ड। हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग शाहरुख खान AKA SRK हैज बीन नेम्ड इंडियाज रिचेस्ट एक्टर विद रिपोर्टेड नेटवर्थ ऑफ अराउंड 10,000 crore रुपीज। एंड यस, दिस इजंट जस्ट बॉलीवुड का मनी, हिज बिजनेस एम्पायर इंक्लूड्स रेड चिलीज, एंटरटेनमेंट एंड नाइट राइडर्स स्पॉट्स। लास्ट ईयर हिज रिपोर्टेड नेटवर्थ वॉज अराउंड 12,490 crore रुपीज। भाई साहब, सो डिस्पाइट अ मैसिव ड्रॉप, द मैन इज स्टिल लिस्टिंग एट द टॉप। मतलब कि पैसा तो गया लेकिन किंग का क्राउन जो है वो बरकरार है। एंड दैट इज माई साइन टू लीव, कि मुझे खुश भी होना है शाहरुख खान के लिए और अपने खुद की कंगाली पर दुखी भी होना है। हे भगवान, कैसे दुविधा में फंस गई हूँ मैं। लेकिन अभी जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर मिर्चीदार बैंगर्स के साथ। मेरा नाम है प्रिसला, मिर्ची मॉर्निंग्स इज ओवर लेकिन तुम्हारा दिन तो अभी स्टार्ट हो रहा है। मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची is my number, that's 9033647244। abhi ke liye tata bye bye, khao piyo aish karo and stay tuned and stay hot।

मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वे कजरा मेरे अंदर हुंदी शूशा शूशा हर वेले हंसा गवा हूँ।

0: बचपन में ना जहां कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना। हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was double role. Twins का concept नहीं पता था हमको। हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विंस भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विंस का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में। हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दो जुड़वा बहनें जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज तरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी, दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था

कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टेन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग कर रही है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अच्छा ये बताओ, एक और एक क्या होते हैं? अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11, और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: This is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, और मिडडे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता। मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद अ फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी, एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ वाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: कितने मजे लिए थे ना जब हमने डीडी वन पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को।
3: क्योंकि ये कौन बोला?
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना, एक किशन जो कि इनोसेंट सा बंदा है और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। वेल, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है, और ये सब वो हफ्तों हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहुना प्यार है। एंड हे, बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमा कर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर, और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहो ना प्यार है दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एज अ काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए हैं, उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी, एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसे कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ हर रेयर डबल रोल फिल्म्स, क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी, अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी, ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही है, विच वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ फन दैट वाज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्स ही मारे जा रही थी, जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते थे और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था। मैंने कहा ना, काजोल सिंस देन टिल नाउ हैज बीन स्वीटी, द आउटगोइंग बोल्ड एंड मॉडर्न, एंड दैट इज हाउ वी लव काजोल। नहीं क्या, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, मिर्ची इट्स हॉट।
3: Wanna nacho all night? Do you feel alright? Wanna nacho all night?

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो।
2: ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों
1: बाप। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट, जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी। वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी, इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
2: क्योंकि ये कौन बोला? मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड्डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर मीठी सुपारी,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो, तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में, जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना। लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है। शुक्र

ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। यू नो, रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वहीं ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

energy. It's hot.

वेलकम। ये वो टाइम होता है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और उस जमाने के गानों को, उस जमाने की बातों को एंजॉय करते हैं। सो आ गई आपकी प्यारी श्रेया, और आज मैं एक हॉरर फिल्म लेकर के आई हूँ। अब आप इसको हॉरर फिल्म भी कह सकते हो, मिस्ट्री फिल्म भी कह सकते हो। यू नो, एट दैट टाइम हॉरर और मिस्ट्री को बहुत अलग अलग नहीं देखा जाता था। थोड़ा सा हॉरर में मिस्ट्री होती थी और थोड़ी सी मिस्ट्री में हॉरर होता था। लेकिन एक बड़ी खास बात है इस फिल्म की। वेल, दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जो कि डैनी ने, हाँ जी, द एक्टर डैनी ने डायरेक्ट की थी। ये उनकी पहली और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें थे राजेश खन्ना और किम, और इसमें थी अरुणा ईरानी। वेल, ये किस फिल्म की बात कर रही हूँ? मूवी का नाम है फिर वही रात। 1980 की ये फिल्म है। आपको ना आज उसके बारे में बताऊंगी। कम राइट बैक, मिल करके गप्पे लड़ाएंगे इसी फिल्म के बारे में। मैं हूँ श्रेया।

0: ये घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: एक चतुर नार।

अच्छा, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आई मीन, वैसे तो सारी दुनिया आकर के ज्ञान दे देती है, लेकिन ऐसे बहुत कम दोस्त हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में थी किम। किम का ये डेब्यू फिल्म थी, राजेश खन्ना, अरुणा ईरानी। फिल्म वॉज मिस्टीरियस, फिल्म वॉज हॉरर फिल्म, थोड़ी सी हॉरर थी, ज़्यादा नहीं थी। इस फिल्म में डैनी जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जिससे उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया एंड ख़त्म भी कर दिया। मतलब इस फिल्म के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम नहीं रखा। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डैनी जी जो थे ना, वो सेम काइंड ऑफ रोल्स कर करके थक गए थे। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे NNCP साहब, वो डैनी जी के बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो एक बार डैनी जी ने ना उनसे बस ऐसे ही शेयर किया कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रही है। तो NNCP जनरली कोशिश करते थे कि उनकी फिल्में नए डायरेक्टर्स यू नो डायरेक्ट करें। ही यूज टू गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। और जब ये बात उनके खुद के दोस्त ने कह दी तो फिर कैसे नहीं हो। तो ये जो फिल्म है फिर वही रात, ये डैनी जी ने डायरेक्ट की है, एंड दिस रिमेन्स दी ओनली फिल्म दैट हीज डायरेक्टेड। लेकिन ये करने का मौका उनको किसने दिया? उनके दोस्त NNCP ने। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यंग टैलेंट को एक चांस देने में बिलीव करते थे प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो। सो डायरेक्टर्स तो उन्होंने कई सारे नए नए बनाए, जैसे कि सुभाष वाही, जैसे कि अशोक रॉय, सीपी दीक्षित। एंड जब बात हुई डैनी जी की, तो उनके साथ तो ऑलरेडी वो दो फिल्मों में काम कर चुके थे, वन वॉज चोर मचाए शोर एंड द अदर वन वॉज फकीरा। इन दोनों में उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, मतलब ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड डैनी जी ऑफकोर्स फिल्म में थे। इसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और डैनी ने बस ऐसे ही कहा कि मैं अब सेम तरीके के वही रोल कर करके थक गया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। ऐसे में सिप्पी साहब ने कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, ये एक हॉरर फिल्म होगी, फिल्म का नाम था फिर वही रात, तो ये तुम डायरेक्ट कर लो। अब पता नहीं, डैनी जी को शायद डायरेक्शन इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, ही वेंट बैक टू एक्टिंग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, इस फिल्म की बातें होती रहेंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कहा ना ना ना, काका यानी राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा है आजकल बॉलीवुड में, यानी बड़े पर्दे पे, उनको लो। तो फिर क्या हुआ, इस हॉरर फिल्म में आ गए शशि कपूर की जगह राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। ये फिल्म में थे काका राजेश खन्ना अलोंग विथ किम, और किम का ना ये डेब्यू फिल्म थी। वेल, पहले इसमें शशि कपूर होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, स्पेशली प्रोड्यूसर्स होते थे, वो ना मार्केट रिसर्च पूरी करके आते थे कि कौन सा एक्टर चल रहा है, किस पे पैसा लगाना है, और उनका बहुत से होता था इन द कास्ट ऑफ द फिल्म। सो इस फिल्म में भी भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें काका आए यानी राजेश खन्ना आए, नॉट शम्मी कपूर साहब। वेल, फिर क्या था, डैनी जी की ये ओनली डायरेक्टेड फिल्म थी, और उन्होंने काका जो कि उनके दोस्त थे, मतलब हल्के फुल्के वाले दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, उनको पूछा एंड काका ग्रेट। दिस इज हाउ दिस हॉरर फिल्म वॉज मेड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

लेकिन इस फिल्म के बाद से दोस्ती खत्म हो गई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15th अगस्त 1980 को इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना थे इसमें, किम थी, एंड दिस वाज दी ओनली फिल्म जो डैनी जी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म पे पैसा लगाने वाले यानी प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी साहब, जो कि नए डायरेक्टर्स को चांस देते थे, और इस बार उन्होंने चांस दिया था अपने दोस्त डैनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये बात ने एक दरार पैदा कर दी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि फ्रेंड्स हुआ करते थे यानी सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में। वेल, डैनी जी ने तो ये तक कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं होता, सब एसोसिएट्स होते हैं। लेकिन फिर एक बार और दोनों ने एक साथ काम किया, वो कितने साल बाद था और क्यों किया, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

12 साल लग गए इस दोस्ती को वापस जमने में, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, पर मुझे समझ नहीं आया ये कैसी दोस्ती हो सकती है। आई मीन इमेजिन, तुम अपने दोस्त को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, ओके, और उसमें उस ड्यूटी में माना कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, पर तुमने उसको ट्रस्ट किया ना, इसलिए उसे दिया। अब उस ड्यूटी में अनइंटेंशनली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, जिसमें उस बंदे का, तुम्हारे दोस्त का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो खराब हो, लेकिन नहीं होती है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या आप अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे? अब ऐसे ही कुछ हुआ था सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, फिर वही रात जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, इस मूवी की 1980 में ये फिल्म आई थी, एंड ये डैनी जी की इकलौती डायरेक्टेड फिल्म थी। डैनी जी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, वो सेम रोल्स कर करके एकदम बोर हो चुके थे। एट दैट टाइम सिप्पी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सिप्पी साहब वैसे भी नए डायरेक्टर्स को मौका दिया करते थे, तो उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, इस फिल्म को तुम डायरेक्ट कर लो। Now what happened was that this film actually flopped at the box office. 15th August 1980 पे ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जबकि इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड किम। अब इसका पूरा ठिकरा जो है वो सिप्पी साहब ने डाल दिया भाई डैनी जी के ऊपर, कि उनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना पाता, ऑल ऑफ दैट। दोनों दोस्तों ने एक्चुअली में 18 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी, एंड आफ्टर 18 ईयर्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यू नो एक पिटारे में डाला और उसको बंद किया, एंड दे वर्क टुगेदर इन द फिल्म कॉल सिलसिला है प्यार का। लेकिन इसमें 18 साल लग गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती नहीं होती। आप अपने दोस्त से नाराज कितने दिन, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो जाके उसे झप्पी पा ही लेते हो, है ना? पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डैनी जी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत बहुत नर्वस थे, एक्सट्रीमली नर्वस थे जब वो अपनी पहली और आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म जिसके बारे में आज बात हो रही है, मूवी का नाम है फिर वही रात, 1980 की ये फिल्म, और इसमें थे राजेश खन्ना। अच्छा, डैनी जी ने कहा कि क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्शन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। ही सेड कि मैं दोनों में से एक काम कर सकता था, पर क्योंकि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब, जिन्होंने ये फिल्म उनको दी थी, वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, तो उनको डुअल काम करना पड़ गया। और क्योंकि वो डायरेक्शन में पहली बार उतरे थे, तो उन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाए। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की बातें चलेंगी। वेल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था दी एक्ट्रेस किम ने, पर उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये अभी आपको बताऊंगी। कहानी बहुत मजेदार है। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रहा है।
1: किम हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका डेब्यू ऑपोजिट राजेश खन्ना होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शशि कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को किम से, और एनएन सिप्पी एक्चुअली लाइक्ड हर। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना है, मैं आपको उनके ऑपोजिट उतारूंगा। ये फिल्म थी फिर वही रात, जिसकी आज बात हो रही है, जो कि डायरेक्ट की थी डैनी जी ने। किम फिर मिली डैनी से इन द फिल्म कॉल्ड चोर मचाए शोर उनके सेट पर। एंड डैनी जी क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे फिर वही रात, दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई तो किम एक्चुअली ब्लेम्ड हरसेल्फ। शी सेड कि वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाई, उनकी पहली फिल्म थी एंड उनकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। लेकिन ये बात सिप्पी साहब ने एकदम एक सिरे से नकार दी। ही सेड कि हम आपके साथ फिर से काम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ यू द फिल्म फ्लॉप। बट इमेजिन वॉट, शी नेवर गॉट रिपीटेड इन एनी ऑफ द एनएनसीपीज फिल्म अगेन। पुरानी जीन्स पे आज फिर वही रात की बातें हो रही है। अभी गाना भी सुनाऊंगी, कम राइट बैक। मतलब मैं नहीं सुनाऊंगी, इस फिल्म का गाना सुनाऊंगी।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो इस रोल के लिए वोटिंग हुई थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एक कैंडिडेट थे जीतू जी जितेंद्र जी और दूसरे कैंडिडेट थे काका यानी राजेश खन्ना। वेल आज बात हो रही फिल्म फिर वही रात। वेल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे डैनी जी और ये उनकी इकलौती डायरेक्टेड फिल्म बन के रह गई। इस फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब। Now what happened was कि सिप्पी साहब चाहते थे कि जीतू जी इस फिल्म में आए, लेकिन डैनी जी ने कहा कि जीतू जी ना फिल्म के रोल के लिए मैच्योर नहीं दिखते, वो चाहते थे कि काका इस रोल में आए। अब काका का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उस टाइम पे एकदम फ्लॉप चल रहा था, सो दोनों के बीच में थोड़ी जय हुई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस के स्टाफ से वोट कराते हैं। एक्चुअली में जितना वहाँ पे कास्ट एंड क्रू था ऑफिस का, सबने वोट किया। दे हैड टू वोट अमंगस्ट जीतू जी एंड राजेश जी। एंड सोचो किसने जीता? ऑफ कोर्स इट वाज राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

एक्ट्रेस किम के फादर ने ना उनको एक वार्निंग दे रखी थी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा डेब्यू हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री चेंज करना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात, 1980 की फिल्म है। 15 अगस्त 1980 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना एंड किम थी इसमें। किम जिन्होंने अपना डेब्यू किया था इस फिल्म से, एक और जने हैं जिन्होंने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, दैट वाज डैनी। सो किम के फादर ने ना उनको ये वार्निंग दे रखी थी कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो फिर करना, अदरवाइज अगर 6 महीने क्रॉस कर जाते हैं यू स्टिल डू नॉट हैव अ गुड फिल्म इन योर यू नो इन योर लिस्ट, तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये बात किम ने बताई थी अपने दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर उनको ले गए एनएन सिप्पी साहब के पास, और सिप्पी साहब डैनी जी के पास जो कि फिल्म बना रहे थे फिर वही रात। सो सिप्पी साहब ने शशि कपूर से प्रॉमिस किया था कि उनके दोस्त के लिए वो एक अच्छा लॉन्च प्लान करेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड right opposite none other than kaka yani Rajesh Khanna. Purani jeans pe main hu Shreya, come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई उस जमाने में सोशल मीडिया पे भले ही ट्रोलिंग ना हो, लेकिन फिल्मी मैगजीन्स कम नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड किम उनकी ये डेब्यू फिल्म थी जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इंडिया की हॉरर फिल्म जिसका नाम था फिर वही रात। इट वॉज डायरेक्टेड बाय डैनी जी, एंड इसमें मेन लीड में थे राजेश खन्ना, और उनके ऑपोजिट मैदान में पहली बार उतरी थी दी एक्ट्रेस किम। सो उनके लुक्स को लेकर के, रादर उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिला था। फिल्मी मैगजीन्स ने लिखा था, फिल्मी पंडित्स ने बोला था, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ तो इंडस्ट्री में बहुत स्प्रेड हो गया था दैट शी इज एक्सप्रेशनलेस। लेकिन जब किम ने इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, तो उन्होंने कहा कि उनके डायरेक्टर डैनी चाहते थे कि उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे रहें, एकदम डेड पैन की तरह रहें। सो शी डिड व्हाट द डायरेक्टर आस्क्ड। अब भाई दोनों में कौन सही था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद किम जी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी टू गेट अनदर फिल्म इन हर किटी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ फिर वही रात, इसकी बातें चलती रहेंगी। कम राइट बैक।

रवि साहब की आवाज़ है, मुझे जाने दो, अगर अभी नहीं गई तो कल मिलने फिर कैसे आऊँगी। बट येस, इन केस अगर आपको मुझसे बात करनी है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना है, जहाँ आप भी मुझसे कुछ बोल सकते हो, रेडियो पे तो सिर्फ मैं ही चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। सो फॉर दैट, फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव। ऑन दैट नॉट, गुड नाइट।

पुरानी जीन्स पे हाफ और श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, याने लेट्स हिट द हाईवे। वेल, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का हाईवे हिट आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हो, क्योंकि वो है

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: इंट्रोवर्ट हूँ दोस्त, ज्यादा लोगों से बात करना, ज्यादा बाहर जाकर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अलग अलग जगह जाकर सोशल मीडिया से पोस्ट करके बता रहे हैं लोग। ये जरा समझ सी नहीं आई बात, आपको आई तो बताओ यार। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और मैं यही सोच रहा था कि लोग ना इंट्रोवर्ट को एज अ कूल वर्ड मानने लग गए हैं। मतलब एक्सट्रोवर्ट से आपको सीखें, जो दिल से एक्सट्रोवर्ट हैं वो भीड़ में खो जाएंगे लेकिन हमेशा ये बोलेंगे कि मैं हूं एक्सट्रोवर्ट, मुझे पसंद है लोगों से बात करना घूमना। लेकिन इंट्रोवर्ट्स में ना कुछ फेक इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं जो सिर्फ दिखाते हैं लेकिन अंदर से उनके भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी टाइम टू टाइम घूमने जाते हैं, बट समझ तब नहीं आता जब मैक्सिमम बार वो खुद को इंट्रोवर्ट सोशल मीडिया पे बोलते हैं इतने सारे लोगों के आसपास खड़े होकर। एंड दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सो मेनी स्टोरीज, हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? क्या मेरा ये थॉट सही है या इसमें कुछ ऑल्टरेशन करना है? तो आओ बात करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। फिलहाल कुछ बढ़िया गानों के साथ शुरुआत करते हैं। दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट,
1: मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरी मम्मी की जय,

पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख इश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: चुप होए बादशाह। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: कर दे दिल की फीलिंग्स।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।